परि सोंदाई निपाल मक्त शिला शादि उम भू अमरी ना इनुम सिंह कुंग याग कई रवदा नो पो नले हो सिंह।

0: देवी शाइबिया, क्या आप सुन रही है?
1: कहिए महाराज, इस दासी को क्या आदेश है?
0: सुनो रानी, मुझे बताओ कि प्रजा मेरे बारे में क्या कहती है। मैं अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार हूँ। सब कुछ न्योछावर करने में मुझे कोई संकोच नहीं है।
1: नहीं नहीं महाराज, उतना मत सोचिए।
0: देवी,
1: आप प्रजाहित में सोचने वाले धर्मात्मा और दानवीर हैं। आपके राज्य में प्रजा को किसी वस्तु की कमी नहीं है। सब लोग कहते हैं कि मांगने पर आप अवश्य सबकी सहायता करेंगे।
0: प्रिय रानी, उनका कहना सत्य है। प्रजा के लिए सब कुछ न्योछावर करना ही मेरा कर्तव्य है। प्रजा के भलाई करने से मुझे सच्चा सुख मिलता है। परंतु आज इन बातों को यही रहने दो। आज मैं शिकार पर जाऊंगा। क्या मेरी सब वस्तुएं तैयार हैं?
1: महाराज, सब कुछ तैयार है आपके लिए। मेरे विचार से सब व्यवस्था पूरी हो गई है।
0: अच्छा, तुम हमारे पुत्र रोहितास का ध्यान रखना। मैं अब जाता हूँ।
1: ये कैसा शुभ संकेत है? मेरी आंख बहुत फड़क रही है।
2: माँ, ओ माँ।
1: हाँ।
2: मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ और आप तो यहाँ खड़ी है। माँ, क्या हुआ? आप इतनी चुपचाप क्यों खड़ी है?
1: मेरी बच्ची, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारे पिताश्री शिकार के लिए निकल चुके हैं। हम दोनों उनके सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आओ भीतर चलते हैं।
2: ठीक है माँ।
0: मेरे राज्य के लोग कितने सच्चे हैं। वे धन लोभी नहीं है ना दकियत है। सब लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। इसी कारण मैं शांति से राज्य चला रहा हूं। अब जंगल भी पहुंच गए, शिकार करना आरंभ करता हूं।

0: रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, क्या निर्बलों का रक्षा करना गलत है मुनिवर? शांति से सोचिए, आपको मुझ पर क्रोधित होना नहीं चाहिए।
1: सुनो हे राजा हरिश्चंद्र,
0: बताइए।
1: हम दोनों आपस में धर्म की रक्षा और धर्म शास्त्र के अनुसार दान पर विचार कर रहे हैं।
0: महर्षि,
1: यदि तुम राजधर्म के अनुसार दान देना ही अपना परम धर्म मानते हो,
0: महर्षि,
1: तो मैं दान पाने की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ।
0: भगवान,
1: मेरी इच्छा के अनुसार मुझे दान दो।
0: हे भगवान, मैं आपको क्या दूं? निसंकोच कहिए।
1: हे वीर पुरुष, मुझे तुमसे जो दान चाहिए वह तुम स्वयं हो।
0: भगवान,
1: तुम्हारी पत्नी शैव्य और तुम्हारे प्रिय पुत्र रोहिताज भी चाहिए।
0: महर्षि,
1: इसके अतिरिक्त तुम्हारा सब कुछ मुझे दान में दो।
0: हे भगवान, आपने जो कुछ मांगा मुझे स्वीकार है।
1: सुनो राजन, यह नगर, भूमि, वनस्पति, धन और संपत्ति सब अब मेरे हो गए हैं। तुरंत तुम, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा प्रिय पुत्र इस राज्य से चले जाओ।
0: ठीक है भगवान, मैं यहां से चला जाता हूं। अभी अपने पत्नी और पुत्र को संदेश भेजता हूं।
1: नहीं, तुम अब यहां के राजा नहीं रहे। किसी को भेजो और दोनों को यही बुला लाओ।
0: जैसी आपकी आज्ञा हे भगवान। कोई है महारानी और पुत्र रोहितास को हमारे पास लेके आओ।
1: अभी एक और बात कहना शेष है।
0: कहिए भगवान।
1: तुम तो विश्व प्रसिद्ध दानवीर हो
0: महर्षि।
1: तुमने मुझे दान तो दे दिया, पर अभी दक्षिणा देना श्रेष्ठ है।
0: दक्षिणा?
1: मेरी दक्षिणा दिए बिना तुम यहां से नहीं जा सकते
0: महर्षि।
2: महाराज, मेरी स्वामी, मैंने जो सुना क्या वह सब सत्य है?
0: हाँ महारानी, सब सत्य है। अब हम अलग अलग रहेंगे। तुम और रोहितास को एक ब्राह्मण को बेचकर भी दक्षिणा पूरी ना हो पाए। अब मैं अपने आप को भी एक संदाल के हाथों बेचकर महर्षि की दक्षिणा दे दूंगा।
2: क्या आपकी स्थिति को मैं क्या कहूं
0: महारानी?
2: ये स्वप्न है या वास्तविकता, समझ नहीं पा रही हूं।
0: रो मत शैविया, क्या तुम मेरे रानी नहीं हो? राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को रोना शोभा नहीं देता। धैर्य रखो।
2: स्वामी, मुझे क्षमा करें, अब मैं नहीं रोऊंगी। देखिए महाराज, हम माँ बेटे को लेने आए हैं।
1: कहाँ है मेरी खरीदी हुई दासी?
2: हे ब्राह्मण, आपकी दासी यही है।
1: अभी जल्दी चलो, बहुत काम बाकी है, मेरे पीछे आओ।
2: हाँ पुत्र रोहितास।
3: जी माँ।
2: आओ, इस विदाई के पल एक बार तुम्हारे पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं।
3: पिताश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।
0: पुत्र।
2: स्वामी, मैं जाती हूँ। आपके आदेश का पालन पूरी निष्ठा और लगन के साथ करूंगी।
0: महासती सैबिया, अब जाओ, मुझे बिछड़ने की पीड़ा

0: अब कभी ना हो।
1: क्या है, रोने धोने में बहुत समय व्यर्थ हो गया। काम शुरू कब का कर सकते थे। तुम मेरी खरीदी हुई दासी हो, शीघ्र करो, पूजा का समय हो गया है। मंदिर के प्रांगण को भी सजाना बाकी है और पूजा के लिए पुष्प भी तोड़ना है। जल्दी चलो, मेरे पीछे आओ।
2: चलिए। हे ब्राह्मण देवता, आपके पीछे पीछे आती हूं।
1: हे राजन, अब मेरी दक्षिणा पूरी हो गई, इसलिए मैं जाता हूं।
3: मुनिवर,
1: तुम भी अपने कर्तव्य निभाओ।
3: हे भगवान, इस तुष प्राणी का दिया दान स्वयं स्वीकार करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपके आदेश अनुसार कर्तव्य निभाने जा रहा हूं। प्रणाम महर्षि।

0: इतना समय लग गया, तो बाकी काम कब करोगे? अरे पुष्प भी अभी तक नहीं तोड़े, प्रसाद भी तैयार नहीं हुआ। धीरे धीरे करोगे तो कभी समाप्त नहीं होगा। शीघ्र करो, मुझे भी बुरा और हमेशा टोकने वाला बना रही हो। अब तुम्हारा पुत्र कहाँ चला गया?
1: वो पूजा के लिए फूल लेने गए हैं। हे ब्राह्मण, कृपया क्रोधित न हो, मैं सारा काम समय पर कर दूंगी।
2: मैं अब स्नान करने जा रहा हूँ, वापस लौटने तक सब काम पूरा हो जाना चाहिए।
1: ठीक है ब्राह्मण देवता। हे मेरे स्वामी, आप किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं? सैव्या, तुम कितनी दुर्भाग्यशाली हो। मेरे फूल जैसे बच्चे दो वक्त के भोजन के लिए फूल तोड़ने और सूखी लकड़ी ढूंढने जाता है। अब सहन करना कठिन हो रहा है महाराज। हे ईश्वर, इस दासी की दुखी अवस्था से आप अनजान है क्या?
0: दासी, क्या तुम सुन रही हो? देखो, तुम्हारा पुत्र फूल तोड़ते समय सांप के काटने से मर गया है। यहाँ तुम्हारे पुत्र का मृत शरीर है।
1: क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, हे भगवान, ये नहीं हो सकता। मेरा पुत्र रोहितास सांप के काटने से मर गया? पुत्र रोहित, राजमहल में आनंद से रहने वाला मेरा पुत्र, फटे पुराने वस्त्र पहने अब इस धूल के ऊपर आनंद से लेटा हुआ है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
0: ओह, अब रोने बिलखने में समय व्यर्थ मत करो। अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करो। देर मत करो, शमशान घाट ले जाओ।
1: अपने पुत्र की अंतिम क्रिया करने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। बिना धन के अंतिम संस्कार पूरा करने को कोई तैयार नहीं होगा। हे स्वामी, आप कहाँ हैं? हे विधाता, तेरी अब कौन सी परीक्षा बाकी है? अब राजा हरिश्चंद्र पर कौन सी दुर्दशा दिखानी बाकी है? हे शमशान घाट के संस्कारक, कृपा आप मेरे पुत्र रोहितास का अंतिम संस्कार संपन्न कीजिए।
3: कौन है? देवी शैबिया, ये क्या हो गया? मेरे पास आओ, मैं आपके राजा हरिश्चंद्र हूं।
1: ओ, स्वामी आप? हाँ। आप महाराज हरिश्चंद्र? शमशान घाट की तीव्र गर्मी से आपका मुख झुलस गया है। देखिए महाराज, हमारे पुत्र रोहितास सांप के काटने से मर गया है। धन ना होने के कारण मैं खुद उसे यहां लाई हूं।
3: क्या क्या कह रहे हो? पुत्र रोहितास, बस मैं पुत्र रोहितास के सबका अंतिम संस्कार करूंगा और तुम भी उस ब्राह्मण के घर लौट जाओ। हमारे दुख का कोई अंत नहीं है।
0: थेरो राजा हरिश्चंद्र,
3: कौन
0: तुम्हारे लिए दान ही परम धर्म है। यह हमने देख लिया, अपने सामने खड़े देवताओं को देखो। देवराज इंद्र ने तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित किया है।
3: भगवान,
0: अपने पुत्र को अयोध्या का राजा अभिषेक कर सुख समृद्धि से जीवन
3: व्यतीत करो।
4: भगवान

0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯕꯦꯟꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: आज का प्रश्न है महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दान में क्या मांगा आज का प्रश्न है महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दान में क्या मांगा
0: अचुंब पाखुम पीबीरपसिंग की मनुंगदगी लॉटरी तौरगा खनगतलब महिरोयसिंगदा अहानब मना ओइना लुपा चमंगा अनीसुब अमसुंग अहुमसुब तारबसिंगदा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी अदोंना पाखुम पीबीरपदा इसागी मिंग क्लास अमसुंग स्कूल की ममिंग बैंक अकाउंट डिटेल लोइनना डिस्ट्रिक्ट मरिकचुमने इबिरगा एसएमएस की खुथांगदा पिजरीब नंबर 9378120495 ता पाखुम पीबीरो पाखुम पीबीरकबा मतमदा एपिसोड नंबर इबीरकबा काउबीगनो प्राइज विनर दी ngasidegi chaiwol amagi matungda lawthoksegani mamangda sangoksakhiba episode chingda chumna paukhum pibirakpa amadi lucky draw tawduna khangatlaba mana phanglagadaba mahiroi sing lawthoktuna khanganjari episode number 450 gi mana phanglagadaba mahiroi sing di mathangsitna ahanbada ningsok ngam sanglai laikon apu primary school ani subada taurangbam sweta saint dominic sevio high school uripok amasung ahum subada oinam kritishan ratan kumar memorial school kwakaithil hino khongmen bine episode number 450 gi mana phanglagadaba mahiroi sing di mathangsitna ahanbada yumnam chingkhai nganba sing kaisamthong high school ani subada rajkumar hariharan sing saint joseph higher secondary school imphal amasung ahum subada g hanthoi devi porompa chabalekai high school ne episode number 452 gi mana phanglagadaba mahiroi sing di mathang sitna ahanbada elangbam mahai thoiba saint joseph high school wangkhai ani subada saikhom changkhonbi chenu Nirmalabas Junior School amasung ahum subada Bhavya Elangbam Ratan Kumar Memorial School Kwakaithil Haino Khongmembini Episode number 454 gi mana phanglagadaba mahiroi singdi mathang sitna ahanbada Ningthaujam Linthoi Chanu Lilong Higher Secondary School ani subada Yayoiba Wanglembam Laikon Upper Primary School Imphal East amasung ahum subada L Matekson Christ Jyoti School Mantripukhri ni Episode number 455 gi mana phanglagadaba mahiroi singdi mathang sitna ahanbada Thaunaujam Roshni Sanu the ANK English Academy Langmaidong ani

मथंगदा खुदोल तमजरी नाउबोई सदानंदा रोसिबिना अमदी कविता गे अपुन बखोंजलदा मोइरांगथेम इनाउना सैलेंबा आरके जितेना सैरांग बैसै

मथंग द खुदल तमजरी कविता गी कंजल दा मोरांग थेम इनाउ न सैरिंग बा आर के जितेना सैरंग बैसै।

आकाशवाणी इम्फाल हौजेक तोान तोान सैसक्प सिंह सकप गीत ताबीरसे खुदोल के अहानबदा लौबीरसे कुमार शानुदगे गीत

ताबिदे सैथिंग अमना फिल्म सिदेगी दिनेश शर्मा की कोंजल दा अहन बीन सेरिंग बदुगा गोपी ने सेरंग बिसै फिल्म सै मथंग दमु ताबिरसी करीगी इंथोक पीरी हारीवा फिल्म सिदेगी मंदाकी नियम दि रणबीर थौना नि पुन समिनाबा टी हाइस विजेता ने सेरिंग बदुगा कोकोबीना सेरंगबा मणिपुरी फिल्म सै

0: हेलो हेलो,
1: हेलो गुलतनु मैम।
0: गुड आफ्टरनून लेडीज के थोड़ा दा दुम बुता राम नोकचरी कना वही बीरे बनो।
1: मैं मैं खुराई देगी ही रोमावती ने नियम बस फुला में टाइप नजरी नोकचरी ने
0: होई खुराई देगी ही रोमावती बुता राम नोकचरी।
1: होई
0: रोमावती ngasigi good afternoon ladies ki thorumda call to birakpa thagachari kari karamba anupi ubisinga mari leina ba wapham sing phongdok pining bage thambiyo
1: oi ei mate ki tang haje ge miam a thorum kunna ma tegi khoi gi hakthien gi program je
0: hoi
1: miam
0: ta jai hai biyo
1: miam ta bi ba yam na ai gon de in ko ma thok pa dong taw wa ai di yam lap na lai je ya ba
0: hoi ai gon de su igo to e yam na wari sa na ba se nungai ta ba ma phau je telephone line sin nungai ta ba ma le
1: a de de do su ai yam pi yam lap na tham ho re ba
0: hoi
1: me dam thok pi re yeng di ne
0: a thok tre ho jik ti phong dok piyo
1: a khoi gi me dam hoi na tham di ri ba ko ram je si gi marak ta hak chen ji na khwai de gi maru oi bra na khan ja ba
0: hoi
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯝꯕꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯄꯣꯛꯆꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯑꯃꯅꯤꯗꯪ ꯍꯪꯕꯤꯔꯗꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯍꯪꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯅ ꯅꯣꯛꯆꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯀꯥꯡꯑꯣꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯃꯦꯟ
0: ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯔꯣꯃꯥꯄꯇꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ
1: ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯕ ꯈꯪꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯎꯅ ꯈꯣꯡꯉꯒ ꯉꯥꯡꯕ ꯆꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯞꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯕꯥꯔꯗꯒꯤ ꯂꯝꯆꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯁꯄꯦꯛ ꯃꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯊꯥꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯥꯏꯒꯨꯁꯤꯡꯗꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯎꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯀꯣꯌꯥ ꯌꯧꯅ ꯈꯪꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯤꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯩꯅꯨꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯉꯥꯡꯉꯒꯁꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯇꯞꯅ ꯉꯥꯡꯉꯒꯁꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯦ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯡꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯁꯦ ꯂꯧꯔꯛꯇꯦꯕ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯗꯤ ꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔꯁꯦ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯐꯪꯗꯦ ꯃꯤꯅ ꯑꯁꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ

0: हेलो,
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून लेडीज की थोड़ा तराम नौसरी गुड आफ्टरनून का नाव पीरा बनो सेक्टर देगी संध्या रानी हो संध्या रानी करी मथेल चाबी रगे हो अदी कॉल फंगा करम वफम नो मैम फोंदोपीदोरी से
1: मैडम कलर अयामनेको मनी मऊगी मौ वखन ताब मऊ मनेमी खननी मचिनी मचा लेजी है मौरोंगी माइकैदगी इनेम नाते इमानी इपानी इमु मनुनी खलगदी मने पोकी लाइब इचाय मौसे सेवा तंग मापा सेवा तंग लाइन नुशीनगर मौगी अहल मंजिल माब पोप अहल मंजिलनाजु ए लेरमीबो ननेमदो नफुदो आमन नुसिनना लेमिनौ खैबु नंगबो पोप मामा पापा नि खल्लगल लेमिनौ नुसिनना लेमिनौ हाइन वारी साबिबदा सोकान लेके हेदा लेमी बमनेमदना सु आइन हे पोकते बिसाने न खंतोगदि थावना निगाय लेके नुसिनना दब
0: गुड आफ्टरनून लेडीज की थोड़म फोन तौरतना संध्या रानी की पुकनिंग वफम थम्बीरम अखोई की थोड़म की अहम होना खुदोल तब्जरके मैं पुनः तामीनसे इसई सेशकलीब समुराई लाटपम नवचंद्र शर्मा सैरेंब नंदलाल रोय इसई खुदोल तम्जरी गुड आफ्टरनून लेडीज की थोड़म ताबीरीब मैं पुनः तामीनसे

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
2: हेलो हेलो।
0: तभी ब्रा हेलो
2: अभी
0: कनाओ बीरा बनो। गुड आफ्टरनून लेडीज की थोड़ा मुद्दा तराम नोक चेरी।
2: ओ आई ओ इधर आई जे नारु खंगा मुखंगा की इमा मुमोने
0: इमा नसी की थोड़ा मसी दा सरोग या बीरा पे की तमकता थागट पपुंग टुक चेरी। ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯤꯡꯕꯒꯦ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
2: ꯋꯥꯐꯝ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯟꯖꯕꯗꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯂꯣꯏꯕꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯗꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯥꯗꯕ ꯌꯦꯛꯇꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯈꯟꯖ

0: हेलो
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून मैडम।
1: गुड आफ्टरनून।
0: फोन तौर पर कोई नाम खाजे मोपाली अरुण दयंती नौ
1: अरुण दयंती तराम नौसरी
0: गुड आफ्टरनून दीदी फोन तौर खाली मैडम।
1: हाँ फोन दौ अरब कलर से अरुण दयंती ने
0: विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिस है डी आई टी है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है नाइट्रब है बिल्डिंग सेमगी जेनेरल मेनेजर की फमोंग्रब मई हेलोम सेक्शन की कामबूगी सागल
1: हौब
0: खे चंगद चमहमे ऑफिसर फमहमेहे डिस्ट्रिक्ट की मको है डी सी मैडम खराब पामे डी सी हायर अथोरिटी चल खराब जेनेरल मेनेजर सो मौम चा नी अब चप थो
1: आकाशवाणी इम्फाल की संदोचरी थोरम से फोंदोपिरी वफम से अखोई थोरम से पुताबिरगा मरी लेनेबसिना कदाई करी लेबेगे हाइबतु यंगसिनबिरप ओइरसनो ngasigi damakta di akhoi gi call tobiraktuna thorum sarog ya bibegi damakta thakatpa phungdok seri ngasigi good afternoon ladies asigi aroiba oina isai mangkatang khudol tamjage soinai raba thamoi hari ba famous degi boniyam ama dipusparani ani puni samina ba हेरोजीत नौरबम सैरंग अमरजीत राजकुमार नापीगनी अमरजीत लौरबम सैरंग मैं पुनः तमीन से

धन्यवाद रंजना। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

श्रोताओं आज शनिवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम एक ही रूप। तो आप अनुमान लगाइए कि आज का एक ही रूप कार्यक्रम किस गायिका पर आधारित हो सकती है। तो सुनते हैं ये

का साधना सरगम के गानों पर। अभी आपने सुना क्यों हो गया ना फिल्म से एक गीत, आवाज दिया है साधना सरगम और उदित नारायण ने, गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

अभी आपने सुना कुछ ना कहो फिल्म से साधना सरगम और सान के युगल स्वरों में एक गीत। शब्द रचना जावेद अख्तर के हैं और सुरों से पिरोया है शंकर एहसान लोई ने। आइए अब सुनते हैं खुदगर्ज फिल्म से मोहम्मद अजीज और साधना सरगम के युगल स्वरों में एक गीत। बोल इंदिवर के हैं और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम एक ही रूप, जिसके अंतर्गत आप सुन पा रहे हैं गायिका साधना सरगम के गाने

अभी आपने सुना जो जीता वही सिकंदर फिल्म से साधना सरगम और उदित नारायण के युगल स्वरों में एक गीत। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। आइए अब सुनते हैं साथिया फिल्म से साधना सरगम और एआर रहमान के युगल स्वरों में एक गीत। शब्द रचना गुलजार के हैं और संगीत से सजाया है एआर रहमान ने।

श्रोताओं, आज के गीतमाला कार्यक्रम के लिए बस इतना ही, लेकिन बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में, वो भी कंगला चैनल में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, तो मेरा इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: मारा, वो तो बहुत अच्छी है।
1: तुम्हें डराने के लिए मैंने झूठ बोला।
0: हम नहीं डरते, हमारे मैडम तो बहुत अच्छी है।
1: सुप्रभात
0: सुप्रभात
1: मैडम।
0: मैडम।
2: सुप्रभात बच्चों, बैठो बैठो। आज हम आजाद हिंद फौज नामक पाठ पढ़ेंगे बच्चों।
0: मैडम, आजाद हिंद फौज को INA के नाम से भी जाना जाता है ना?
2: हाँ, सही कहा लीली। आजाद हिंद फौज को INA के नाम से भी जाना जाता है। तुम सब ध्यान से सुनो।
1: जी।
2: रास बिहारी बोस भारत के महान क्रांतिकारी थे। वो भारत से जापान चले गए थे और जापान में उन्होंने भारत के इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, और इस लीग में दक्षिण पूर्वी एशिया के भारतीयों ने भी भाग लिया। जापान में युद्ध बंदी बनाए गए, हजारों भारतीय सिपाही इस लीग में शामिल हुए। इसी लीग ने जापान में आजाद हिंद फौज बनाने की योजना शुरू की।
1: तो मैडम, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का उद्देश्य क्या था?
2: हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। जनरल मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की देखरेख की उस समय। गांधी जी और बाबू राजेंद्र प्रसाद जैसों ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को हटाने के लिए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना, इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया।
0: मैडम, अगर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया तो आंदोलन का क्या हुआ?
2: ठीक पूछा। पहले सुनो लीली, मैं कहानी का अगला भाग सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना रही हूँ। वह देश प्रेमी होने के साथ एक बहुत चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति थे। अगर वह इसी प्रकार जेल में बंद रहते तो कोई आंदोलन का कार्य नहीं हो पाता। यही सोचकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया और मजबूर होकर सरकार ने उन्हें जेल से चुपके से छोड़ दिया।
1: अच्छा, जेल से छूटने पर तो वे बहुत खुश हुए होंगे।
2: देखो, कहां से खुश होंगे बेटे, अपने घर में रहने पर भी चारों ओर पुलिस की कड़ी नजरबंदी थी। पुलिस की कड़ी निगरानी में उन्हें रखा गया था।
0: ओ, तो मैडम, तब तो वे बहुत कष्ट में रहे होंगे। अपने ही घर में पुलिस की निगरानी में रहना उनके लिए बहुत दुखदायक होगा ना?
2: मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वह चुप बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। वह हमेशा सोचते रहते थे कि पुलिस के चंगुल से कैसे निकला जाए। और अचानक सन 1941 में एक दिन वह शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंक कर एक गूंगे पठान के वेश में फरार हो गया। वह अपने घर से निकलकर पहले पेशावर पहुंच गए, फिर काबुल और वहां से बटमन होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। सिंगापुर से फिर वह जापान पहुंच गए, और फिर जापान पहुंचकर उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतवासियों की सहायता से आजाद हिंद फौज को दृढ़ और शक्तिशाली बनाया।
1: मैडम,
2: हाँ,
1: उनके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति शासन करे तो संसार सुखमय हो जाएगा।
2: कैनेडी, क्या तुम्हें सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रिय लगे हैं क्या?
1: हाँ, वे मुझे इतना प्रिय लगे कि मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता।
2: और लिली, तुम्हें?
0: वे मुझे इतने अच्छे लगे कि मेरी आंखें भर आई। मैं अभी छोटी हूँ, इसलिए अपनी भावनाओं को ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर सकती।
2: तो फिर तुम्हारे कहने का अर्थ है कि वह तुम्हें दिलो जान से प्रिय लगे, है ना?
0: हाँ मैडम। बिल्कुल, आगे सुनाइए, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ।
2: सुनाती हूँ। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की सरकार की स्थापना की गई। आजाद हिंद सरकार का प्रशासन संगठित था। इसके पास लगभग 20 करोड़ रुपए की पूंजी भी थी। इतना ही नहीं, इस सरकार ने अपने डाक टिकट भी जारी किए हुए थे।
1: अच्छा।
2: जिन पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी थी। मोइरांग में सुभाष चंद्र बोस की एक विशाल मूर्ति भी स्थापित की गई।
1: अच्छा।
2: वहां आजाद हिंद फौज से जुड़े ऐतिहासिक चिन्ह देखने को भी मिलते हैं। बच्चे,
1: मैडम, मोइरांग में स्थित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देखने का मेरा बहुत मन है। स्टडी टूर पर जाते समय हम उसे जरूर देखना चाहते हैं।
2: अवश्य बच्चे, हम जरूर देखने जाएंगे। इस साल के स्टडी टूर में मैं तुम सबको वहां ले जाऊंगी और तुम जो देखना चाहोगे सब दिखाऊंगी।
1: जी
0: मैडम, अब आगे सुनाइए।
2: सुनो अब आगे की कहानी। उस समय आजाद हिंद फौज में लगभग 50,000 सैनिक थे और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ये नारा हमारे राष्ट्र का परम पवित्र मंत्र बन गया। इसी समय सुभाष की पुकार भी गूंज उठी।
3: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद।
2: 1944 की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
1: अच्छा।
2: वे जापानी फौज के कब्जे में रहे, अंडमान द्वीप गए। वहां भी उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि जापानी फौज की सहायता से वे भारत से शक्तिशाली अंग्रेजों को भगाकर मातृभूमि को स्वतंत्र कर सकेंगे।
1: ओह, ये तो बहुत बड़ी योजना है। शक्तिशाली और 80 शस्त्रों से सजित ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाने की सोच पर हमें गर्व है।
2: बिल्कुल सही कैनेडी, तुम्हारी बात ठीक है। नेताजी की बनाई हुई योजना को कोई साधारण व्यक्ति नहीं सोच सकता।
1: मैडम, अब आगे सुनाइए।
2: लेकिन उस समय भारत के कई राष्ट्रवादी नेता उनकी योजना पर विश्वास नहीं करते थे और जापानी युद्ध नीति पर भी उनका भरोसा नहीं था। फिर भी जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया। तब सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ ब्रिटिश मोर्चे पर आगे बढ़े। इस प्रकार टिडिम रोड से होते हुए वे वर्तमान नागालैंड की राजधानी कोहिमा की ओर बढ़े। इस यात्रा के दौरान वे सबसे पहले मोइरांग में रुककर, फिर इंफाल से होते हुए कोहिमा की ओर चले। उस समय उनके नारे गूंज उठे।
3: दिल्ली चलो, जय हिंद,
4: जय हिंद।
3: दिल्ली चलो, जय हिंद,
4: जय हिंद।
3: दिल्ली चलो, जय हिंद,
4: जय हिंद।
2: आजाद हिंद फौज में महिलाओं का भी एक अलग रेजिमेंट था। इसका निर्माण लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में किया गया था। उस रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। इस प्रकार वह सफलता की ओर बढ़ते गए। कालांतर में दुर्भाग्यवश जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराया गया, जिससे जापान के अनेक लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए और दोनों शहर बहुत हद तक नष्ट हो गए। इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में जापान की बहुत बड़ी हार हुई।
1: जापान के हारने पर सुभाष चंद्र बोस की फौज का क्या हुआ मैडम?
2: जापान

0: की पराजय के बाद सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज भी खंडित हो गई और केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई।
1: मैडम, फिर सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, कृपया ये भी बताइए।
0: हाँ, ये भी बताती हूँ। उनकी योजना असफल नहीं मानी जाती, लेकिन परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रही। एक आश्चर्य की बात यह है कि सिंगापुर से जापान जाते समय हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु होने की बात कही जाती है, लेकिन इसकी सच्चाई आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। बच्चों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं।
2: जी मैडम।

0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯕꯦꯟꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ
1: आज का प्रश्न सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की आज का प्रश्न सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की
0: अचुंब पाखुम पीबीरप सिंह की मनुंग दगी लॉटरी तौरगा खनगत लब महिरोई सिंह दा अहान बमना ओइना लुपा चमंगा अनी सुब अमसुंग अहुम सुब तारब सिंह दा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी अदोम न पाखुम पीबीरप दा इसा की मिंग क्लास अमसुंग स्कूल की ममिंग बैंक अकाउंट डिटेल लोइनना डिस्ट्रिक्ट मरिक चुम न इबीरगा एसएमएस की खुथांग दा पिजरीब नंबर 9378120495 दा पाखुम पीबीरप पाखुम पीबीरप मतम दा एपिसोड नंबर इबीरप काउबीगनो प्राइज विनर दी नसीदगी चैउल अमगी मतुंग दा लाउथोक्सेगनी ममांगद संदोक्सखिब एपिसोड चिंग दा चुमना पाखुम पीबीरप अमदी लकी ड्रो तौदुना खनगतलाबा मना

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजेक मणिपुरी दमरो इबा पाउ ताबिरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजेक फबगी मरो इबा पाउ नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर गुवाहाटी लंबीदा ngasi इम्फाल देगी टोंगान टोंगान बगारी त्रामापन दा पैसेंजर चामरी रोम सेट की हाईरी सरकार की सेरोल मेने हाई गारी सिंग दुगी मनुंग दा बस निपान मसुंग विंगर त्रामथो याउरी गारी सिंग असि ngasi अयुक पुंग तरा दा इम्फाल थादुखिबनी मरफुत्रा मंगा सुबा हाइपौ जादनंग लेखिदबगी निमित कमरी लेनेना जेलेरों पुई चैप्टर न ईदान तौबगी थौरम अमा ngasi लांगोल सिजा ब्लड सेंटर द पांगथुखरे ngasi गी थौरम दुदा ब्लड यूनिट कुन्नीथोय हॉस्पिटल असि दान तौरम की हाइरे इम्फाल जिला गी बासिकोंग द लेबा गुरु इराबोत इंस्टीट्यूट ऑफ मणिपुर कल्चर ने सिंधुना था अमरोम चथरकपा तीन ताल अचौबगी वर्कशॉप कम प्रोडक्शन ngarang lusinkre थौरमसि चीफ मिनिस्टर गी आर्टिस्ट सिंग गी तेंबांग सीएमएटी स्कीम गी मखादा पांगथोखिबनी हाइरे कक्षिंग जिला की कैरक्ता सेंगमाई बरास की गेट चिंथदुना लौमी अथुब इसिंग फंगनव दाबी तौदुनासी लौमी खोंजन चंसिनखरे डॉक्टर उसम देबेन एम एल एमसुक मई लेनव विभाग की मयूसिंग उनदुना गेट असी थादुना लौमी इसिंग पीरगनी हाइना थाजब पीरखरे हाइरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुकनिंग की वा मन की बात की चाम कुंत्रा तरह सुब एपिसोड हयेंग नंगाइजिंग नुमित के युपुंग तरामाथोयदा आकाशवाणी की थोंग द संदोकनी थौरमसी AIR News, DD News, PMO मसुंग Information and Broadcasting मंत्रालय के YouTube चैनल सिंग दसु लाइव स्ट्रीमिंग तौदुना संदोकनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्बेस्कितान की नुमित निनी की खोंगसत ngasi अयुक भारत ngasi भारत थादोखरे प्रधानमंत्री ना उज्बेकिस्तान की प्रधानमंत्री उनदुना लैबाक अनी मरी हेना चेचिलनब वफम सिंग खनगनी प्रधानमंत्री ना खोंगसत असी की तुंगदा क्रिगिस रिपब्लिक ते चतकनी हाइदी अमसुंग भारत अमसुंग सर्बिया ना थासी कुंत्रा माथुइदगी सेप्टेम्बर अम फाउबा सथगदब अवांग बथा की मिफमदा केंद्र की पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री किरण रिजिजू ने लुचिंगनी हाइरी मिफम असी की नुंगे वारोलदी द लिगेसी ऑफ नन अलाइनमेंट लेसन्स फॉर टुडेज वर्ल्ड हाइबसिनी पाउलोइजरे

चाबी युने वकत से सेंगल थमोएगी तमजगे ने पौदम्बो खोईरांग बपुकमिंगी पंथा बिखो मिकुप खरदी ताबी खोमपुंग फाना खनबीनु नहकना फिरेपनी तराइबा ताहनबीनु लाइबक्षो नोंबान मागम पुंजा खरतदी पीबीखो उच्चगे नैतुम साचबी लैरांग मात बुलाइनिंग ओइजबा खोइमुनी हाइबदो लोंजरोय पुकनिंगशु लाचा के लेंगदना महक तबु थमोईदा पामजब लगतगी नुंशी जब दुशु ऐ खतनी ओइजगी ऐ खतना पुंशीगी अशुम खुदोंगी मरी शुबद लौबी रसी कैनेडिया मरी मिनरवाग्य पुनब खोंजेलदा संतोष अकोई जमन सैरेंगबा ग्लीशन थौदामन सैरांगबा हाथो हाथो चखिनो

वाइटून देगी प्रेमी लंजिंग चौब देगी ससीबला थामबन हिजम लेकाई थोबी खुराई निंथोबुंग लाई लेरकतगी रोमी अमदी रोजीना खनबिरगली लानंग लोइखिनु फिल्म सिदगी राहुल शर्मा सुरमाचनु अनिगे पुनब खोंजेलदा ngairanggum sarachandrana sarengba gopi kokna serangbaisei.

जुबिन नौटियाल प्राकृति काकर दी गीत ताबीदे खुदोल गेरो विदम लोखचरीबा गीत की सैसक अनुष्का मनचंदा निखिल देशोजा

नमस्कार, रात के इस खूबसूरत पहर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है हरसिंगार और मैं हूं नूपुर। तो रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, शहर की आवाजें धीमी पड़ती जाती हैं, हवा कुछ ज्यादा ही सुहानी लगने लगती है और चांदनी में जाने क्यों पुरानी यादें कुछ ज्यादा ही साफ दिखाई देने लगती हैं, है ना। शायद इसीलिए तो कुछ गीत दिन में सिर्फ गीत होते हैं लेकिन रात में किसी की याद बन जाते हैं। और आज की रात ये महफिल है प्यार की, मोहब्बत की, चांद तारों की, महबूब के ख्यालों की और उन खूबसूरत एहसासात की जो कहे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दौर से जब मोहब्बत में खत लिखे जाते थे, इंतज़ार किया जाता था और एक नज़र मिलना भी पूरी कहानी कह दिया करता था। फिल्म संगम से ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में।

क्या कहिएगा उस जमाने को जब मोहब्बत में जल्दबाजी नहीं थी। मिलने के लिए बहाने होते थे, बिछड़ने के लिए आंसू और इंतजार के लिए पूरी पूरी रातें। कभी चांद से पूछा जाता था क्या वो भी मुझे याद कर रहे होंगे, और कभी हवा से कहा जाता था अगर उसके शहर से होकर गुजरो तो मेरा सलाम कह देना। यही तो खूबसूरती थी उस दौर के प्यार की। और अब जरा सोचिए, खुली खिड़की, हल्की हवा, आसमान में चांद और सामने बैठा कोई अपना, तो ऐसे माहौल में एक खूबसूरत नगमा तो बनता ही है। फिल्म अब्दुल्ला से एक बार फिर मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: बिल्कुल आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रोग्राम हर श्रृंगार साथ मैं नूपुर। हर श्रृंगार वो फूल जो रात में खिलता है और सुबह होते होते अपनी खुशबू छोड़ जाता है, बिल्कुल कुछ यादों की तरह जो रात में हमारे पास लौटती हैं और सुबह तक दिल में अपनी महक छोड़ जाती हैं। और शायद प्यार ना, प्यार भी कुछ ऐसा ही है, किसी की आवाज़ याद रह जाती है, किसी की हंसी याद रह जाती है, किसी का साथ याद रह जाता है, और कभी कभी तो सिर्फ एक मौसम भी ऐसा होता है कि किसी की याद दिलाने को काफ़ी होता है। तो इस सुहानी रात में सुनते हैं एक बेहद रोमांटिक खूबसूरत सा नगमा जो शायद आज की रात अगर आप तक पहुँचे तो किसी की याद ताज़ा कर जाए आपके जहन में। रुत है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी की आवाज़ें, फिल्म बेला से ये गीत।

कभी-कभी ना मोहब्बत होना कोई बड़ी बात नहीं होती बस ऐसा लगता है कोई पूछ ले आज चुप क्यों हो और हम मुस्कुराकर कह दें कुछ भी तो नहीं जबकि दिल में ना पूरा एक मौसम उतर आया हो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें नाम देने की जरूरत नहीं बस एक एहसास काफी होता है एक नजर एक मुस्कान एक खामोश शाम और दूर आसमान में चमकता हुआ चांद ऐसी ही एक नर्म सी रात के नाम एक प्यारा सा तराना एक और रफी लता ड्यूएट फिल्म दिल तेरा दीवाना से जो सामने रख रहा है एक मासूम सा सवाल मुझे कितना प्यार है तुमसे और जवाब जवाब मिलता है जनाब अपने ही दिल से पूछो तुम क्योंकि जिसे दिल दिया है वो तुम हो और मेरी जिंदगी तुम्हारी है

तो मैं नूपुर आपसे इजाजत चाहूंगी फिर मिलेंगे इसी चांद के नीचे इसी हवा के बीच इन्हीं पुरानी यादों के साथ तब तक के लिए रात को महसूस कीजिए चांद को निहारिए और अगर कोई अपना याद आए तो उसे दिल से याद कीजिए आप सुन रहे थे एफएम गोल्ड पर हरसिंगार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के

0: क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Nina Rakel. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, this evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country.
0: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit the Shastri Memorial in Tashkent and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Tashkent, Uzbekistan.
2: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669, while over 2,000 people remain missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. An 11-member technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in Nepal's flood-affected areas today to facilitate search and rescue of stranded individuals. The team comprising doctors, paramedics and tunnel engineers had arrived in Kathmandu yesterday. Today they reached Trishuli in Nuwakot district to assist in efforts to rescue workers trapped in a tunnel belonging to a hydropower project. In a social media post, the Indian Embassy in Kathmandu said today a specialized technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in the area affected by the flash flood, which will help in facilitating early search and rescue of stranded individuals. Nepali security forces have so far rescued 191 workers from tunnels at various hydropower projects in the country, according to the Nepal Army. Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman today said that as global companies reassess their supply chains and capital allocation, India offers not only the scale of a vast market, but also the depth of a long-term investment and operating platform. She made these remarks while addressing a high-level business roundtable with leading investors and business leaders in Chicago, United States. Ms. Sitharaman also emphasized that India's investment appeal lies in convergence of scale, sustained economic growth, skilled talent and world-class infrastructure. The government has said that more than 115 lakh hectares of farmland have been brought under micro-irrigation under the Per Drop More Crop scheme as of July this year. The initiative aims to promote efficient use of water at the farm level and improve water use efficiency in agriculture. The initiative began in January 2006 as the centrally sponsored scheme for micro-irrigation. From 2015-16 to 2021-22, it was officially named Per Drop More Crop and implemented as a core component of the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Under this scheme, small and marginal farmers receive 55% and other farmers receive 45% financial assistance. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for rainfall conditions over Odisha for the next 2 days. The Weather Department also forecasts heavy rainfall tomorrow in places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh, Gangetic, West Bengal. Moderate to heavy rainfall is also expected tomorrow in places over Bihar, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim, Uttar Pradesh and Vidarbha. And that is the end of the news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें श्रोताओं चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े विषयों पर गहरी समझ रखने वाले पत्रकार शिशिर सिन्हा शिशिर जी कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन
2: जी नमस्कार थैंक यू नमस्कार
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं मगर उससे पहले आइए जाने सुर्खियां
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस फॉल फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव वीक सेंसेक्स एंड निफ्टी ड्रॉप्स ओवर 0.3% US stock market indices register weekly gains and global crude oil prices decline this week.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 0.3% फिसले अमरीकी शेयर बाजारों में इस सप्ताह बढ़त हुई और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम घटे
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं बिना विलंब किए जानते हैं कि सप्ताह के दौरान हमारे दोनों ही यानी कि प्रमुख शेयर सूचकांक यानी कि बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया देश के प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई भू राजनीतिक अनिश्चितताओं का बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग 0.3% उड़ के सेंसेक्स फिसलकर 77,265 पर आया वहीं निफ्टी लुढ़ककर 24,176 पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांकों में सप्ताह के दौरान आधे प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई क्षेत्रीय स्तर की बात करें तो निफ्टी मेटल आईटी फार्मा और हेल्थ केयर सूचकांकों में 2% से अधिक की तेजी आई वहीं दूसरी ओर निफ्टी एफएमसीजी में लगभग 1.5% और निफ्टी ऑयल एंड गैस ऑटो तथा डिफेंस सूचकांकों में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 32 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.39 रुपए पर बंद हुआ
0: We have had for three consecutive weeks, due to persistent geopolitical uncertainty, the investors' sentiment was quite low. Now we are talking about the fourth week, so to speak, and the uncertainty remains. So should we continue to have volatility in the market, or do you think there could be some silver lining somewhere?
2: So we should not just think about the uncertainty, geopolitical uncertainty. We should also focus on what was told during the Jackson Hole meeting. If you go by what the Federal Chief Reserve said during that meeting, he said that we have to think about bringing the inflation to 2% level and whatsoever we have to do, we will do it. That means what is the indication? The indication is that there could be an interest rate hike in the month of September. So if it happens, that's not a good news for the market. So geopolitical combined by any action by the Federal Reserve, that will have some action, that will have some impact on the market. So geopolitical, we all know, I mean, we do not getting any sense that when this is going to end. And if you get one voice from US, then another voice from Iran, then another voice from some other country. So there is a continuous thing. So I do not know what will happen, but I believe that now the Jackson Hole commentary by the Fed chief is really, really important. And if he is going to hike the interest rate in the month of September, then that will not be a very
0: but
2: good
0: thing. That's another factor that will come into consideration, Shishir. Geopolitical situation is one, and the Jackson Hole is the other one. You cannot say that that's geopolitical is something that we cannot.
2: I'm saying that it is important. I'm saying that apart from the geopolitical, now the another concern for the market is... is the if any rate hike by Federal Reserve in the month of September, that means there could be more FPI outflow, because when you the interest rate is high, people are going for the profitable venture. So I'm not discounting the geopolitical factor, but I'm also adding one more factor which is bringing some kind of nervousness among the market participants.
0: And also on the sectoral front, Nifty, metal, IT, pharma, healthcare did pretty well. So which are the sectors that you would recommend that we should keep our eye on?
2: After this NVIDIA latest result and their commentary on the result, now we are seeing a good recovery in the IT sector. I mean, if you can remember, last month we were talking about that how IT sector is going to be affected. Now because NVIDIA is saying that infrastructure investment will be continue to be more, and that is good news for the IT sector. So my first priority would be IT sector, because it's slightly on the valuation side. The second will be, of course, the PSU banks. I think the PSU banks are very undervalued. There should be more and more opportunity there. And the third one, all-time hit, फार्मास्यूटिकल सेक्टर.
1: आपसे और भी बातें करेंगे और भी सवाल पूछेंगे हम, मगर उससे पहले आइए पहला सवाल लेते हैं कोलकाता से. अनिमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अनिमेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र.
1: गुड इवनिंग,
3: दिस इज अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता.
1: बहुत स्वागत है आपका.
3: सर, आई हैव वन क्वेश्चन.
0: प्लीज गो अहेड.
3: वुड इट बी सेफ टू इन्वेस्ट ए ह्यूज अमाउंट in the market of smartphone? Thank you, sir.
1: Smartphones ko lekar ke wo pooch rahe hain ki kya ye wajib hoga abhi yahan par nivesh karna.
2: देखिए, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां जो हैं, जो गिनती की कंपनियां हैं, जो कि शेयर बाजार में हैं, और अभी एक चर्चा ये चल रही है कि जो 25,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन है उस पर जीएसटी की दर 18% से घटा करके 5% कर दिया जाए. तो इस समय में जो मोबाइल हैंडसेट का मार्केट है उसमें थोड़ी हमने गिरावट देखी है. करीबन मतलब बीते कुछ समय में बहुत तेजी थी, लेकिन अभी कुछ समय से गिरावट आ रही है क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं. और कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि मोबाइल हैंडसेट में लगने वाले जो एक खास कलपुर्जा होता है वो उसकी कमी दुनिया के बाजारों में देखने को मिल रही है. तो अब 12 सितंबर को जब जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है, और अगर मोबाइल हैंडसेट में दरें कम की जाती हैं जीएसटी की, तो वो उन कंपनियों के लिए बेहतर होगा. तो मुझे लगता है कि 2 सप्ताह इंतजार कर लें, उसके बाद अगर उसमें आप जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा.
1: ये तो रही मोबाइल की बात, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ईवी पर, तो ईवी पर आपकी क्या राय रहेगी?
2: देखिए, ईवी को लेकर के थोड़ा सा बुलिश मैं इसलिए हूँ क्योंकि कई तरह के प्रोत्साहन की बात चल रही है, कई तरह की योजनाओं की बात चल रही है. यहाँ तक कि अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूँ, उन्होंने भी प्रोत्साहन योजनाएं की बात की है. तो ईवी सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं या जो भी हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उनके लिए स्थिति बेहतर तो नजर आ रही है. लेकिन एक चीज अभी ध्यान में रखना है कि जो हमने कहा कि चिप की बात है और कीमतों को लेकर के बढ़ाने का सिलसिला चल रहा है, और अभी भी हमारे यहाँ ईवी में एक कंसर्न आता है इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा उसको पीछे खींचती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और खास तौर पे जो ईवी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए स्थिति बेहतर है.
1: और ईवी का विजन खाली यही तो नहीं है ना कि हम अभी वो बुलिश हो रहा है या वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम एक ग्लोबल लेवल पर भी देखते हैं अगर.
2: बिल्कुल,
1: तो ईवी बहुत किफायती भी है हाउस होल्ड के लिए.
2: नहीं, कीमत के लिहाज से अगर आप सोचेंगे तो ईवी आपको एक सामान्य जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है उससे थोड़ा महंगा होता है
1: शुरुआत में.
2: लेकिन आप ये भी देखिए कि उसकी जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की. आप गाड़ी तो ले आते हैं, चार्जिंग कहाँ कराएंगे?
1: जी,
2: और खासतौर पर अगर मैं टीयर टू टीयर थ्री सिटीज की बात करूँ वहां पर एक समस्या है अभी भी, तो एक कॉशस है, लेकिन चूंकि ये ईवी बनाने वाली जो कई कंपनियां हैं वो फोसिल फ्यूल भी बनाती हैं और जहां पर हम अच्छी खासी बिक्री देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि वो स्थिति अच्छी है। वो
1: दिल्ली से हमारे साथ वत्स राज जुड़ रहे हैं। महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्कार।
1: नमस्कार
4: मार्केट मंत्रा। नमस्कार सुशील सिन्हा जी। सर मेरा सवाल है कि क्या एक कंपनी का कोई शेयर होल्डर जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होता है, और अगर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है तो जब कंपनी डीलिस्ट होती है तो क्या उसको उसके पैसे कुछ वापस मिलते हैं जो उसकी शेयर होल्डिंग होती है उस टाइम उस समय के मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग? प्लीज थैंक यू।
2: देखिए कंपनी में दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक जिनको हम लोग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कहते हैं, जिनको हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कहते हैं। तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं उनकी स्थिति कह सकते हैं कि जब कंपनी अगर मान लीजिए कि बंद हो गई, कंपनी का सारा कुछ बिकने की स्थिति में आ गया, तो पहला वहां पर हक क्रेडिटर का बनता है। तो जो आपका मूल सवाल था कि क्या वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है या सिक्योर्ड क्रेडिटर है, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के कैटेगरी में आएगा। पहली बात उसको हम क्रेडिटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसने कर्ज नहीं दिया है, उसने शेयर खरीदे हैं, तो वो क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं आता है। वो उसको पैसा तभी मिलता है जब कंपनी पहले कर्जदारों ने जिससे पैसे लिए उसको चुका दिया, सरकार का जो बकाया है उसको चुका दिया, कर्मचारियों का बकाया है उसको चुका दिया, उसके बाद अगर पैसा बचा तो जो फेस वैल्यू है उस शेयर का, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उसके मान लीजिए 1, 2, 5, 10 जो भी फेस वैल्यू, उतने ही पैसे उसको मिलेंगे। अब दूसरा जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है वो एक तरीके से उसका इंटरेस्ट पे भी हक बनता है, और जब कभी भी कंपनी बंद हो जाए या कंपनी डिसॉल्व हो जाए तो उसका हक जो है वो इन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के मुकाबले में आगे रहता है, उनको सबसे पहले भुगतान किया जाता है।
1: दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: जी नमस्कार, मैं दिल्ली से अमित झा बात कर रहा हूँ सर।
2: जी अमित जी बोलिए।
5: हाँ सिन्हा सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि हमने बड़ी अच्छी बात है कि हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं 2047 तक हम विकसित अर्थव्यवस्था बन जाए सर, परंतु सर पिछले 4-5 साल का अगर हम डेटा उठा के देखें तो सर हमारी जीडीपी की रफ्तार वही है, उतनी ही रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन जो है औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा भी कोई खास उत्साहजनक है नहीं सर। तीसरी चीज सर ग्रोस सॉरी ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो चालू खाता घाटा है, अगर हम निर्यात बढ़ता है हमारा निर्यात हमें खुशी मिलती है तो साथ में आयात भी बढ़ जाता है तो ट्रेड बैलेंस वहीं पे रह जाता है जस के तस है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस गति से अगर हम वृद्धि कर रहे हैं जीडीपी और आईआईपी में तो क्या चमत्कारी कोई होने वाला है कि 2047 में हम एकदम से विश्व में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ जाए, हमारी कोई जादू की छड़ी है इस हिसाब से रफ्तार से? तो मुझे लग नहीं रहा कि सर हम
2: अमित जी आपकी आशंकाएं गलत नहीं है कि इस तरह के विकास की रफ्तार से क्या हम 2047 में 30 अरब डॉलर माफ कीजिएगा 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हम बन सकते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से विकास हमारी रही है कि देखिए 6% के ऊपर या 6.5% के ऊपर, फिर से अगर आप 6.5% की दर से विकास करते हैं तो वो एक संतोषजनक स्थिति है। ये ध्यान जरूर रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो बहुत ही प्रतिकूल हैं, और उनके बावजूद भी अगर हम 7% या उससे ऊपर की दर से विकास करते हैं तो हमारे लिए एक बेहतर स्थिति है। अब रहा सवाल कि क्या इसी रफ्तार से हम 2047 में 30 ट्रिलियन डॉलर 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन पाएंगे, मेरा जवाब होगा नहीं। यहाँ पर आपको विकास की रफ्तार ऊंची चाहिए, आपको 8% या 8% के ऊपर चाहिए, 9% का चाहिए, लेकिन वो केवल आपके हाथ में नहीं है। अगर कोई कहे कि केवल और केवल सरकार ही सब कुछ करेगा, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो अगर आपके हिसाब से नहीं है, कच्चे तेल के भाव काफी ऊपर चल रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपकी आशंकाओं से सहमति रखता हूँ।
0: जॉइनिंग अस फ्रॉम बेंगलुरु इज एनआर प्रसाद, अ वार्म वेलकम।
6: Hi, good evening, Market Mantra. This is Anar Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Prachi ji.
0: Hello, how are you?
6: Mr. Sinha, just one question. What is exactly this CAS starting from the SEBI closing action session and from 3:15 to 3:30 p.m. And in that first 5 minutes is called IEP. Really, I don't know how it works. My broker is starting this new session from Monday onwards. Can you just detail on this, what exactly how it works? Thank you. This is my question.
2: Mr. Prashad, I may not be able to give you much detail about the CAS, but I can tell you that CAS is basically all talking about the price discovery during the last 15 minutes of the session, trading session, which is between 3:15 and 3:30. And that is based on the future and that's basically on the derivative trading. So that is one thing. There are a lot of, differences are there. There are a lot of issues are there because this is a new system. So of course, there will be some teething problem and what we have seen during last 15 days. But when we were talking to SEBI chairperson, he made it very clear that we are not going to make much change into that. But of course, all the views and all the suggestions are most welcome. So if I just summarize it into just one sentence, it is a new mechanism for the price discovery. There are some issues because the brokers are not very much aware about this new system. So there are some problems like what happened on Friday also. But trust me that within 15 days or within a month or so, we believe that the system will stabilize and there will be a proper price discovery, which is going to benefit the market.
1: दिल्ली से योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, कृपया अपना सवाल पूछिए.
7: जी नमस्कार आपको. देखो, मेरा सवाल ये है कि जैसे कहा जाता है कि मार्केट में, शेयर मार्केट में खास तौर पे कि जो लार्ज कैप है उनका ग्रोथ रेट स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा कम रहता है, और आने वाले 10 साल या 15 साल या 12 साल में स्मॉल कैप और मिड कैप लार्ज कैप को बीट कर देते हैं. तो एक डिटेल इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है कि वो लार्ज कैप में एलोकेशन ले, यानी कि क्यों ना वो अपना 50% ज्यादा एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप पर ले, अगर उसने निश्चित कर ही लिया है कि उसको 15 से 20 साल का इन्वेस्टेड रहना है.
2: योगेश जी, यहाँ पर मुद्दा यह है कि आप खरगोश की रफ्तार से रखना चाहते हैं या कछुए की रफ्तार से चलना चाहते हैं. बाजार में बहुत तेज उतार चढ़ाव अगर आए वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है. स्मॉल कैप और मीडियम कैप के साथ, मिड कैप के साथ एक बड़ी समस्या क्या आती है कि उसमें बहुत ज़्यादा हम तेजी से उतार चढ़ाव देखते हैं, और इसीलिए आपको लगता है कि उसमें जो फ़ायदा हो रहा है या उसकी जो कीमतों में अंतर है वो लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है. ध्यान रखिए कि लार्ज कैप के रास्ते में बैरिक जो कहते हैं ना कि स्पीड ब्रेकर्स उस तरीके के नहीं होते हैं जैसे आपको स्पीड ब्रेकर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलता है. तो मिड कैप और स्मॉल कैप गलत नहीं है, अगर गलत होते तो बाजार में उसकी अनुमति ही नहीं होती. बाजार में वो है यानी कि वो सही है. लेकिन एक निवेशक के लिहाज से और एक कहते ना कि आप एक लंबे समय के लिए आप बने रहना चाहते हैं, तो वहां पर आपके लिए ये एक बेहतर होता है कि आप लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर लेते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप में कम रखते हैं.
0: जितेंद्र फ्रॉम दिल्ली जॉइंस अस नाउ. अ वार्म वेलकम जितेंद्र.
8: हां जयपुर से, नॉट दिल्ली. ठीक है. हेलो
2: जी, जयपुर से ही हैं आप जितेंद्र जी, बताएं.
8: अच्छा हाँ सर, ये पिछले बार आपने बहुत अच्छा बताया कि टुकड़े में प्रॉफिट भी बुक करिए और इंस्टॉलमेंट पे परचेज भी करिए, बहुत अच्छा लगा. और आपने हिंट भी दे दिया था लार्ज कैप फंड का. ठीक है, तो आप हमसे सर बस ये दो चीज बताइए कि सर जैसे भी कौन सा सेक्टर मतलब थोड़ा सा भी सस्ता है हम लॉन्ग टर्म के लिए ले. ऐसे तो मैंने आईटी में शुरू कर दिया है, आईटी में. इसके अलावा
2: तो आपका ये पहला प्रश्न है, आपने कहा दो प्रश्न पूछने हैं.
8: नहीं,
2: अच्छा एक ही प्रश्न है. अच्छा जितेंद्र जी, देखिए आपने बहुत अच्छा किया है कि आईटी में आपने शुरू किया है, क्योंकि मेरी अपने व्यक्तिगत तौर पे जो है वो राय रही है कि आईटी सेक्टर एक बेहतर दिशा में बढ़ रहा है, संभावनाएं काफी अच्छी बन रही है, तो उसमें आप किस्तों में आप निवेश करते हैं तो वो एक अच्छा विकल्प है. दूसरा, जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स मुझे लगता है कि इस समय में आकर्षक हैं, और तीसरा फार्मा भी है, और इसके साथ साथ अगर डिफेंस में भी आप थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस को लेकर के बहुत सारी योजनाएं आई हैं. और अभी आपको बताएं कुछ दिन पहले DRDO की तकनीक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कही गई थी, यानी कि वहां पर भी डिफेंस सेक्टर्स की कंपनियों के लिए एक अच्छे दिन है. तो आप ये चार सेक्टर्स को ध्यान में रख करके आप निवेश कर सकते हैं. लेकिन हमेशा आपको मैं एक छोटा सा सुझाव जरूर दूंगा, पैसा आपका अपना है, थोड़ा सा पैसे पे मेहनत जरूर करिएगा, अपने स्तर पर भी थोड़ा शोध करिएगा. हमने आपको शुरुआती सुझाव दिए हैं, अंतिम स्वरूप आपको खुद देना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अतिरिक्त मेहनत करनी।
1: शिशिर जी, लेकिन गौरतलब बात ये भी है कि अभी जब जितेंद्र जी हमसे सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि कौन सा क्षेत्र सस्ता है, यानी उनके शायद कहने का अर्थ ये हो कि सस्ते इवैल्यूएशन के जो शेयर होते हैं वो कहाँ है। तो ये कितना सही है कि हम किसी को कोई अगर शेयर 17 रुपए का हमें मिल रहा है तो हम इस इंटाइसमेंट में चले जाएं कि इस लालच में चल जाए कि अरे ये तो 17 रुपए का है, चलो खरीद लो इसे।
2: नहीं नहीं,
1: क्या ये सही है?
2: नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि आप उसकी जिसको कहते हैं ना उस कंपनी और उस क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रख करके उस कंपनी की कीमत को आप आंके,
1: क्योंकि हो सकता है कि 17 रुपए आपने जो लगाए हैं वो भी आपके डूब जाए।
2: बिल्कुल। और आपको एक चीज बताऊं कि हमारे जो शेयर बाजार है उसमें 68 जो है वो सरकारी कंपनियों के शेयर हैं। सरकारी कंपनियों के शेयर अपने बराबर के जो दूसरे उसी क्षेत्र में काम करने वाले निजी कंपनियों के जो शेयर है उससे काफी सस्ते में मिल जाते हैं। तो क्या सरकारी

0: राष्ट्रीय के शहरों में स्थिति अच्छी नहीं है, वो स्थिति अच्छी है क्योंकि वहां पर संभावनाएं अगर अच्छी बन रही हैं तो मुझे लगता है कि कीमत उसी हिसाब से आंकी है। केवल और केवल आप ये मत देखिए कि वो 4 रुपए का है, 5 रुपए का, 6 रुपए का है, तो उसके हिसाब से तो आप चेन्नई शेयर में चले जाइए जिसको लोग पेनी स्टॉक्स कहते हैं।
1: Moving on, major US stock indices ended lower yesterday as investors turned cautious after the Federal Reserve Chair Kevin Warsh reiterated the central bank's focus on fighting inflation, increasing prospects for a rate hike. The Nasdaq Composite Index slipped over 0.5%, the S&P 500 dipped more than 0.2%, while the Dow Jones Industrial Average ended almost flat with a negative bias. However, for the week, the Nasdaq rose 0.8%, the Dow climbed over 0.5%, and S&P 500 gained 0.5%. Meanwhile, in his debut speech at the Central Bank's annual symposium in Jackson Hole, Fed Chair Kevin Warsh said that the Fed's predominant focus should be on prices, noting that inflation remains above its target. He added, better than expected inflation readings over the summer had not convinced him that underlying price pressures had meaningfully improved. The Fed chair said the central bank needs to be confident that the underlying price pressures are moving towards its 2% target at a sufficient pace, or further policy action may be required. We will discuss if time permits on this. In the meantime, we are joined in by Shankar from Bhopal. A warm welcome, Shankar.
2: Good evening, sir.
1: Good evening.
2: So my question is about interest rate, which you have said it is likely to go up. Is the interest low interest rate era will be over, because RBI thought it will be good to have a lower interest rate, ministry thought, government thought lower interest rate will boost the business थोड़ा बहुत तो बूस्ट हुआ होगा, बट ज्यादातर तो रियल एस्टेट प्राइसेस हैव गॉन अप लाइक एनीथिंग, बिकॉज़ नेसेसिटी कमोडिटीज हैव बीन अंडर कंट्रोल मोर ऑर लेस, बट रियल एस्टेट प्राइसेस हैव गॉन अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सो इज दिस द रीजन दे आर कंट्रोलिंग गोइंग टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, नंबर वन। नंबर टू सर, ये एनसीएलटी के क्या लॉज अभी इतने टाइट नहीं है कि पीपल आर एबल टू गेट अवे विथ अगेन विथ इजिली विदाउट having actually paid the responsibility? I'm talking about the recent case which is in the limelight. Sir, thoda sa uske bare mein batayenge to acha hoga.
0: Going by your first question about the lower interest rate, see, I mean, the primary responsibility of Reserve Bank of India is to control the inflation. And if the inflation is high, there are various tools, and one of the important tools is the interest rate. And not just in India, but if you talk about any country, and I believe you are taking cue from what Federal Reserve Chief has said. So he has talked about indicated that interest rate could go up because of the inflation. And in India, we are seeing that now the inflation is, of course, below 5%. It is around 4.5%. But because of the monsoons and because of the some other regions, we are likely to see some hike or some rise in the interest rate. If it happens, then of course there will be some issue on that. Going to your second question, of course I don't have any comment to offer about that particular case, but I can say you that NCLT has a set rules and regulation, and it decides on that only.
1: Global crude oil prices logged weekly losses amid hopes of a possible agreement to facilitate shipping through the Strait of Hormuz. Meanwhile, the traders also assessed comments from the US Fed chair on inflation. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude October futures fell by 5.4% to settle at $89.31 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures dropped 4.2% to end at $83.40 per barrel.
3: Mumbai se hamare saath Ratnakar jud rahe hain. Ratnakar ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
4: Hello. Ji. Mera sawal hai ki aane wale samay mein FMCG, defense aur pharma sector, kaun se sector mein invest karna uchit rahega? Thank you.
0: हम रत्नाकर जी के सवाल के जवाब के पहले एक छोटी सी बात जोड़ना चाहेंगे जो एनसीएलटी की बात की थी। एनसीएलटी से कोई भी अगर नाराज है या उनको लगता है कि शायद उनके प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ है, तो एनसीलैट में जा सकते हैं, जो एपिलेट है, वहां से भी अगर उनको संतोषजनक उनकी जो निर्णय है वो नहीं है, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होता है, जो इस मामले में हम देख रहे हैं। अब आपका जो प्रश्न है रत्नाकर जी, आपने एफएमसीजी की बात करी, आपने डिफेंस की बात की,
3: फार्मा
0: और फार्मा की बात की। दो जो बात के हैं डिफेंस और फार्मा, मैंने अभी दो श्रोताओं के प्रश्न के जवाब में खास तौर पर उसका जिक्र किया था कि आप फार्मा में और डिफेंस में जा सकते हैं। इसके अलावा आईटी सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में स्थिति थोड़ी अच्छी मुझे लग रही है। तो ये चार क्षेत्र हैं जहां पर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं।
1: Prime Minister Narendra Modi has arrived in Tashkent, Uzbekistan today on a two-day visit. The business between both the countries has increased manifold in recent years, and the visit of PM Modi is expected to further increase the business opportunity. We have a report from a correspondent.
5: India is among top 10 partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion. Both countries want to double this figure in the next 3 years. Talking to Akashvani News, Alisher Shaikhov, advisor to the chairman of the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan, said that both countries have the potential to double their business in the coming years.
6: With India, of course, the first is the pharmaceutical, healthcare, tourism, and the medical tourism especially, and also IT, AI, and digital transformation. Because all the countries now are just moving to the digital transformation, and that's the where is we easily can find a lot of the potential to realize and just to get a huge profit just providing services, not only to Uzbekistan, Central Asia, CIS countries, but also to Europe, and also it can be in Japan, South Korea, whereas the aging society is giving potential for us just to be present there.
5: Speaking to Akashvani News, Smita Pant, the ambassador of India in Uzbekistan, said that both countries will also discuss off connectivity issues.
7: Despite connectivity bottlenecks, India or Uzbekistan natural markets hain. Hum zyada niryat kar sakte hain. Hum equipment, machinery, textile machinery, chemical, dyes, surgical equipments, isko hum export kar sakte hain. Hum unse zyada import bhi kar sakte hain. Because ye resource rich nation hai. Stumbling block jo hai, wo hai connectivity. To isko leke dono leaders baat karenge, dekhenge ki kya kiya ja sakta hai.
5: For Market Mantra, this is Sushil Chandra Tiwari from Tashkent, Uzbekistan.
3: केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। उन्होंने अमरीका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। ये किस तरीके से हम इसके प्रोस्पेक्ट्स देख पा रहे हैं शिशिर जी?
0: अभी आपने एक प्रश्न आया था कि हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं उसमें विकास की स्थिति क्या रहेगी। आप देखिए, एक मंत्री निर्मला सीतारमण जी और पीयूष गोयल जी दोनों ही बाहर से ज्यादा निवेश लाने में जुटे हुए हैं। ये उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।
3: शिशिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जितने भी श्रोता जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और राजेश के सवालों के जवाब।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: And before we close, the headlines once again. Benchmark domestic indices fall for the third consecutive week. Sensex and Nifty drops over 0.3%. US stock market indices register weekly gains and global crude oil prices decline this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
8: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
9: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत पहुंचेंगे आप तक कुछ एवरग्रीन फिल्म सॉन्ग्स. ये गीत है फिल्म दो रास्ते से पहुंच रहा है आप तक. एंजॉय कीजिए.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दिल की ये बेकरारी बनी रहे और ऐसे ही आप FM Gold से जुड़े रहें, यही हम चाहते हैं। आप सुनते रहिए FM Gold 100.1 MHz पर। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद आपकी हम सफर बनेंगी माधुरी। फिलहाल नूपुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों की तलाश

0: और बचाव में भारत की मदद जारी है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने कल हाइड्रो पावर सुरंग का मौके पर जायजा लिया। डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और इंजीनियरों वाली यह टीम शुक्रवार को काठमांडू पहुंची थी। कल वे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के काम में मदद के लिए नोवाकोट जिले के त्रिशूली पहुंचे। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक चिली में और लांगटांग इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद भारतीय टीम ने सुरंग के आसपास बचाव से जुड़ा जरूरी काम शुरू कर दिया। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों वाले 82 सदस्यों की एक संयुक्त रक्षा टीम कल से ही मलबा हटाने और सुरंग के अंदर फंसे माने जा रहे लोगों तक पहुंचने के काम में जुटी है। नेपाल की सेना के अनुसार नेपाली सुरक्षा बलों ने अब तक देश के विभिन्न पन बिजली परियोजनाओं की सुरंगों से 191 कर्मचारियों को बचाया है। हालांकि सुरंगों के अंदर और लोगों के फंसे होने की खबरों के बाद नेपाली अधिकारियों ने भारत से मदद मांगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार बताए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Neena Arakel. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, last evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev at the airport. A correspondent covering the Prime Minister's visit reports that the entire Tashkent city has been decked up with Indian flags and colourful hoardings to welcome Prime Minister Modi on his fourth visit to the Central Asian country.
2: The Indian diaspora, comprising mostly of medical students in Tashkent, gathered for a special welcome for Prime Minister Modi. Tomorrow, Prime Minister Narendra Modi and President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, will reflect upon the entire spectrum of bilateral relationship that are based on civilizational ties and built over centuries and strengthened by strong people-to-people ties. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. They will also share perspectives on advancing the shared development vision of Viksit Bharat 2047 and Uzbekistan 2030. Prime Minister Modi is also expected to visit the Shastri Memorial in Tashkent and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Tashkent, Uzbekistan.
1: The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 669, with over 2,000 people remain missing. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. An 11-member technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in Nepal's flood-affected areas yesterday to facilitate search and rescue of stranded individuals. The team, comprising doctors, paramedics and tunnel engineers, had arrived in Kathmandu Friday. Yesterday, they reached Trishuli in Novakot district to assist in efforts to rescue workers trapped in a tunnel belonging to a hydropower project. In a social media post, the Indian Embassy in Kathmandu said yesterday a specialized technical team from India carried out on-site reconnaissance of hydropower tunnels in the area affected by the flash flood, which will help in facilitating early search and rescue of stranded individuals. Nepali security forces have so far rescued 191 workers from tunnels at various hydropower projects in the country, according to the Nepal Army. Union Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman has said that as global companies reassess their supply chains and capital allocation, India offers not only the scale of a vast market but also the depth of a long-term investment and operating platform. She made these remarks while addressing a high-level business roundtable with leading investors and business leaders in Chicago, United States. Ms. Sitharaman also emphasized that India's investment appeal lies in the convergence of scale, sustained economic growth, skilled talent, world-class infrastructure. The United Nations Department of Peace Operations has said that Indian peacekeepers with the United Nations Interim Force for ABE, UNISFA, continue to assist internally displaced people in ABE. In a social media post, the UN department said Indian peacekeepers with UNISFA continue their commitment to assisting internally displaced persons in ABE. The mission's support includes critically needed basic services, educational initiatives, and community engagement. The government has said that more than 115 lakh hectares of farmland have been brought under micro-irrigation under the Per Drop More Crop scheme as of July this year. The initiative aims to promote efficient use of water at the farm level and improve water use efficiency in agriculture. India Meteorological Department has issued a red alert for rainfall conditions over Odisha for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.

जी हाँ, ये सुबहें, ये शामें, ये रातें, आते जाते कोई कहानी ही तो कह रहे हैं। कहानी मेरी, आपकी, हम सबकी। ये कहानी भी हमारी ही जिंदगी के किसी आते जाते लम्हे से टूटकर बनी है। ये कहानी बयां करती है एक बहन के दिल में उसके भाई के लिए उमड़ते स्नेह प्यार की, एक ऐसे इंसान की जिसे हालातों ने जीते जी मार डाला, लेकिन बहन ने उसे बचा लिया। आइए सुनते हैं कहानी प्यारा बंधन।

वो फुटपाथ के एक कोने में दीवार के सहारे दुबका बैठा था। कंबल लेने वालों की लाइन लगी थी, लेकिन वो उठकर नहीं आ रहा था। और जाने क्यों, सीमा की नजर बार बार उसकी ओर जा रही थी। उसने एक मैली कुचैली चादर में खुद को लपेट रखा था, सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। जाने क्यों सीमा को लगा कि शायद वो वही होगा। सभी को कंबल देने के बाद सीमा उसकी ओर बढ़ गई। सीमा को अपनी ओर आती देखकर वो डर के मारे सिमट गया। ना जाने किस बात का डर था उसे, लेकिन जितना जितना वो खुद को छिपाता जा रहा था, उसे देखने की इच्छा सीमा के भीतर उतनी ही बलवती होती जा रही थी। जैसे ही सीमा उसके पास पहुंची, वो चुपचाप उठकर दूसरी ओर चला गया। सीमा ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। मन में हजारों अनसुलझे सवाल लेकर सीमा एक बार फिर से निराश मन और भारी कदमों से वापस घर की ओर मुड़ चली। उसके मन में ख्याल आ रहा था कि फुटपाथ पर बैठे इन लोगों में कोई किसी का पिता होगा, कोई किसी का बेटा, तो कोई किसी का भाई होगा। अनेक दयनीय निगाहें सीमा को उम्मीद भरी नजरों से

उस दिन के बाद सीमा जब भी उस रोड से गुजरती तो एक अनजानी आस जागती और निगाहें फिर उसी इंसान को खोजने लगती। उसे जाने क्यों बार बार लगता कि ये वही है जिसे वो ढूंढ रही है। इस महानगर की गलियों ने बरसों पहले निगल लिया था सीमा के छोटे भाई को। तब से गाहे बगाहे कंबल या खाना देने के बहाने वो इन फुटपाथों पर आ जाती और हर चेहरे में तलाशने लगती उसे जिससे बचपन से एक प्यारा बंधन जुड़ा हुआ था। जब भी सावन का महीना और राखी का त्योहार आता तो भाई की याद में सीमा की आंखें सावन बन जाती। दिन भर उसकी राह निहारने के बाद जब रात को आसमान में चांद निकलता तो अनायास ही उसके होंठों पर

उस दिन राखी का त्योहार था। भाई के लिए स्नेह प्रेम हर दीवार को तोड़ता हुआ महसूस हो रहा था और सीमा के कदम अनायास ही उस तरफ चल पड़े जहां उसने उस अजनबी को देखा था। सीमा ने मन ही मन में ये तय कर लिया कि हो ना हो आज मैं जरूर उससे बात करूंगी। वहां पहुंची तो वो अजनबी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक अंधेरे कोने में वो बैठा हुआ दिखाई दे ही गया। वही फटे कंबल में लिपटी उसकी आकृति बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सीमा ने महसूस किया कि जब दिल में दया करुणा स्नेह प्रेम का भाव उठ रहा हो तो डर कहीं गायब हो जाता है। शायद दया करुणा प्रेम के भाव हर भाव से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। सीमा उसकी ओर बढ़ चली। सीमा को देखते ही वो उठकर जाने लगा तो सीमा ने सामने जाकर उसे रोक लिया। वो ठिठका लेकिन रुका नहीं। सीमा ने उसे आवाज दी, सुनो भैया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो रुक गया लेकिन बोला कुछ नहीं, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। सीमा पूरे अपनत्व को समेट कर फिर बोली, कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं। सीमा को इस तरह अपने सामने पाकर वो घबरा रहा था और खुद को भरसक छिपाने की कोशिश कर रहा था। सीमा बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी बहन हूं, पहचाना नहीं मुझे? उसने अपनी आंखों से थोड़ा सा कंबल हटाया और धीरे से बोला, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। सीमा ने जल्दी से अपना बैग खोला, उसमें कुछ बिस्कुट पड़े थे। उसे पकड़ाते हुए बोली, अभी यही है मेरे पास। उसने जल्दी से बिस्कुट लिया और मुंह दूसरी तरफ करके इस तरह खाने लगा जैसे कई दिनों का भूखा हो। ये देखकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, किस्मत के खेल कितने निराले हैं, ना जाने किसको कौन सा दिन दिखा दे।

बिस्कुट खाने के बाद वो फिर मुड़कर जाने लगा तो सीमा बोली, सुनो मुझे तुमसे बात करनी है। उसने कहा, मुझसे क्या बात करनी है, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे भाई हो। सीमा ने कहा तो उसने मुंह दूसरी ओर घुमाकर कहा, मैं किसी का भाई नहीं, आप जाइए यहाँ से, और हाँ यहाँ बार बार मत आया कीजिए, ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं। ठीक है मैं चली जाऊंगी, बस ये कंबल हटा दो। क्यों? उसने सवाल किया। क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है, मेरा भाई खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ, मुझ पर दया करो। कौन खो गया है आपका? उसने धीरे से पूछा। मेरा इकलौता भाई, वो दिमागी तौर पर कमजोर है, गांव से यहाँ दिल्ली लेकर आई थी इलाज कराने, 12 साल का था, यहीं इसी रोड पर उसकी उंगली छूट गई और ना जाने कहाँ गुम हो गया मेरा भाई। तब से आज तक ढूंढ रही हूँ, दिल्ली की हर गली छान मारी, हर न्यूज़पेपर में उसकी फोटो छपवाई, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वो नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। 10 साल हो गए तब से अपने भाई की तलाश में भटक रही हूँ। अपनी आप बीती सुनाती सुनाती सीमा रोने लगी थी।

सीमा रो रही थी और वो बस चुप था। अब सीमा को उसकी खामोशी खलने लगी थी और उसे गुस्सा आने लगा। उसने चिढ़कर कहा, लगता है कि तुम्हारे भीतर सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, और वैसे भी तुम नकारा लोगों को संवेदनाओं और रिश्तों नातों से क्या, तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते। ये कहकर जैसे ही वापस वो मुड़ने को हुई, उस अजनबी ने ओढ़ा हुआ कंबल गिरा दिया। सीमा की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका जला हुआ चेहरा बहुत बदसूरत और भयानक था। कुछ पल बाद सीमा ने नजरें उठाई और सुना कि वो कह रहा था, देख लिया, मैं नहीं हूं आपका भाई। सीमा ने खुद पर नियंत्रण किया और बोली, कौन हो तुम और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो धम्म से पास पड़े एक पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखें कहीं अतीत की गहराइयों में जा पहुंची और उसके होठों पर

सोहन एक संपन्न परिवार का एक लौता बेटा था। पिता सोहनलाल कपड़ों के बिजनेसमैन थे। घर में माँ और एक छोटी बहन थी। किसी चीज की कोई कमी ना थी। माता पिता ने मोहन को बड़े प्यार और दुलार से बड़ा किया। दुख तकलीफ ने मोहन को छुआ भी ना था। मोहन जब बड़ा हुआ तो उसकी शादी उसकी पसंद की एक लड़की कामना से हुई। कामना बेहद खूबसूरत और समझदार थी। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन सोहनलाल को दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर डालकर चल बसे। मोहन को तब पहली बार पता चला कि दुख हो या सुख, इंसान को ठहरना नहीं है, बस

जी हाँ, सभी की जिंदगी की डोर वक्त के हाथों में है। ये जैसे चाहे इंसान को नाचना ही पड़ता है। मोहन की जिंदगी फिर से आगे बढ़ने लगी थी और वो जी जान से अपना परिवार और बिजनेस संभालने लगा। मोहन की पत्नी कामना भी बिजनेस में उसका हाथ बटाने लगी। मोहन अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, खास तौर पर अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन कमला से। जब भी राखी या भाई दूज का त्योहार आता तो मोहन सारे काम छोड़कर छुट्टी ले लेता और दोनों भाई बहन खूब खुशियां मनाते। मोहन अक्सर अपनी बहन को ये गीत गाकर छेड़ा करता था।

सुख या दुख, समय कोई भी हो, हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन मोहन ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी पड़ोस के गुप्ता अंकल की कॉल आई। हेलो हेलो मोहन बेटा, तुम्हारे घर से धुआं उठ रहा है, जल्दी घर आ जाओ। मोहन बदहवास घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि घर से लपटें उठ रही हैं। वो माँ माँ चीखता हुआ जलते घर में कूद पड़ा। मोहन को जब हॉस्पिटल में होश आया तो उसकी दुनिया लुट चुकी थी। उसकी माँ और बहन को आग निगल गई थी और वो हमेशा के लिए अपना खूबसूरत चेहरा खो चुका था।

मोहन निराशा के भंवर में डूबने लगा। न किसी से मिलता, न किसी से बात करता, बस घर के एक कोने में पड़ा रहता। वो इस अपराध बोध से ग्रसित था कि वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन को बचा नहीं पाया। मोहन एक गहरे डिप्रेशन में जा चुका था और फिर एक रात चुपचाप उसने घर छोड़ दिया।

जाने की सोची, लेकिन जिंदगी मौत से ज्यादा ताकतवर निकली। जाने कब कहां कहां से भटकते भटकते यहां फुटपाथ पर आ बैठा। दिन भर उजाले में छिपकर सोया रहता, रात को खाने की तलाश में निकलता और कहीं कुछ इधर उधर से किसी का फेंका हुआ खाने को मिल जाता तो वो उसी से अपना पेट भर लेता। ये कोई जिंदगी तो नहीं थी, मगर इसके अलावा मोहन के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। या यूं कहें कि जब इंसान की जीने की इच्छा ही मर जाए तो रास्ते होते हुए भी खो जाते हैं और इंसान बस एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है और जिंदगी एक पहेली।

मोहन अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाकर चुप हो चुका था। अब शायद वो सीमा की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। सीमा को खामोश देखकर उसने अपना

कंबल उठाया और चल दिया। सीमा सोच रही थी कि अब क्या करना है। अचानक उसने पीछे से मोहन का हाथ पकड़ लिया और बोली, भैया घर चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज राखी है ना, देखो तुम्हारी कलाई सोनी है और मेरी राखी भी अधूरी।

साथियों, तो ये थी कहानी प्यारा बंधन। कहानी की प्रस्तुति और निर्देशन रश्मि कुकरेती का। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868868753 पर मैसेज करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सुझाव हमारी मेल आईडी fmgoldairdaily@gmail.com पर भी हमें भेज सकते हैं। तो अब दीजिए इजाजत मुझे यानी कुसुम को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये सफर शुरू हो गया है गीत सुहाने का जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से सफर को
1: झुमका गिरा रे झुमका

गीत सुहाने में हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे सुहाने से गीत, और ये गीत सुन रहे थे आप मेरा साया फिल्म से आशा जी की आवाज मदन मोहन के संगीत के साथ।

भाई ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म तीसरी मंजिल से आशा मोहम्मद रफ़ी आर डी बर्मन और साथियों की आवाज़ में और बहुत ही बेहतरीन गीत अभी हम सब ने सुना और इसके बाद अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म जब जब फूल खिले से

तो अभी आपने ये गीत सुना फिल्म जब जब फूल के लिए से, और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म वक्त से। गीत क्या ये कव्वाली है जो बहुत ही मशहूर है और सभी को हमेशा पसंद आती है, तो चलिए आनंद उठाते हैं इसका।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और रात्रि के 1:30 और हो गए हैं पूरे 30 सेकंड माधुरी है आपके साथ और हम और आप दोनों मिलकर सुन रहे हैं गीत सुहाने तो हमें यकीन है कि ये सुहाने सुहाने जो गीत हैं कव्वालियां हैं आपको अच्छी लग रही होंगी तो अगला गाना हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म किस्मत से और इसे गाया है आशा जी ने शमशाद बेगम ने साथियों ने मिलकर ओपी नैयर के संगीत से सजाया ये गाना आप सभी के लिए

इजहार मोहब्बत पे ये सवाल और उनके ये खूबसूरत जवाब बस इसी कव्वाली में मिलते हैं और सच में दिल को छूने वाले दिल अजीज मतलब सवाल जवाब हैं ये और इतने मतलब जो इजहार किया है क्या खूबसूरती से किया है वाह। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ। अगला गीत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म पड़ोसन से। गीत कौन सा है अभी पता चल जाएगा आपको और इसे गाने वाले हैं लता जी आशा जी और साथियों की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। आर डी बर्मन साहब का संगीत है।

तो भई ये तो लड़कियों की टोली जा रही थी और गाती गुनगुनाती हुई एकदम अपनी मस्ती में। और इस टोली के बाद आगे हम चलते हैं जहां फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना। इसका गीत हम लेकर आए हैं आपके लिए आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में, संगीत ओपी नैयर जी का और बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान साहब ने।

रंग कोई भी हो इश्क में सारे रंग एक हो जाते हैं। कितनी प्यारी बात कही है इस गीत में। और इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ जो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए फिल्म तीसरी कसम से आशा जी की आवाज़ में और संगीत जो है वो दिया है शंकर जयकिशन ने।

भाई इस प्यारे से गीत ने तो एकदम जो झपकियां आ रही थी ना वो भी उड़ा दी हैं। चलिए ये गीत तो आपने सुना, अब इसके बाद अगला गीत कौन सा होने वाला है? वो है फिल्म महबूब मेरे महबूब से, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, अगला गीत होने वाला है आप सभी के लिए फिल्म अदालत से, लता जी की आवाज में मदन मोहन के संगीत के साथ। और लीजिए पेशी नजर है आपके ये अगला गीत।

तो गीत सुहाने का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है. आपसे फिर मिलूंगी 2:10 पर लेकर आऊंगी रात सुरमई कार्यक्रम. और अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिससे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जल्द से जल्द बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 11 टन सहायता सामग्री के साथ चौथा विमान C-130J हरक्यूलिस काठमांडू के लिए रवाना हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंचेंगे। वे अल्पुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनमिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। श्री राधाकृष्णन सोमवार को लक्षद्वीप के अगत्ती जाएंगे, जहां वे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप सभी। रात सुरमई लेकर माधुरी है आप सभी के साथ और चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

अकेले हम अकेले तुम फिल्म से ये गीत पहुंचा आप सभी तक। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।

अब ये तो हमें मालूम है कि आप समझ गए हैं कि अभी आपने कौन सी फिल्म का गीत सुना। जी हाँ, साजन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नदीम श्रवण का संगीत। और अगला गीत जो हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म राजा हिंदुस्तानी से है, और उससे पहले एक शेर मेरा सुनते जाइए कि तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखता होगा, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखता होगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा।

0: जोकर।
1: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप, फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, संगीत नदीम श्रवण का और बोल लिखे समीर साहब ने। और कुछ उसके आगे अब हम बोलेंगे। है मोहब्बत की कैसी ये जादूगरी, है मोहब्बत की कैसी ये जादूगरी, दूर रहकर दिलों में ना दूरी बढ़ी, रास्ते मिलके दो एक सफर हो गए, एक मैं हो गया, एक तुम हो गए।

फिल्म बॉम्बे से ये गीत सुना आपने रेमो फर्नांडिस की आवाज में, ए आर रहमान का संगीत और बोल महबूब साहब के। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।

जी हाँ, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। सिर्फ तुम फिल्म से ये गीत सुना आप सभी ने। कलाकार अमीन साबरी और फरीद साबरी थे, संगीत नदीम श्रवण का और बोल समीर के। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।

0: और इसी के साथ रात सुरमई का ये सफर भी यहीं पूरा हुआ जाता है। और दीजिए माधुरी को इजाजत, 3:10 पर हमराही लेकर रूपा होंगे आपके साथ। फिलहाल सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
2: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4थी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिससे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है वे भी लापता है। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले 2 दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। इस बीच चीन में रुके 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और बीजिंग में भारतीय दूतावास या उनसे सीधे या स्थानीय सरकार के माध्यम से संपर्क में हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का आधार भी है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो हिंदू यह मानता है कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, वह हिंदू नहीं रह जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुत्व हर इंसान की गरिमा को पहचानता है और एक ही सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों को स्वीकार करता है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता नाम के धर्म गुरुओं के सम्मेलन में बोलते हुए श्री भागवत ने 2018 में दिल्ली में एक व्याख्यान श्रृंखला के दौरान मुसलमानों द्वारा उनसे पूछे गए एक सवाल और उस पर दिए गए अपने जवाब को याद किया। उन्होंने कहा

नमस्कार आप सभी को. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. समय हुआ है 3:11 और 16 सेकंड. हमराही कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे शहर में जहाँ का कोई नक्शा नहीं है. जी हाँ जनाब, हैरान हो गए ना आप. ये और नहीं, ये है हमारे सपनों की सुनहरी और अनकही दुनिया, जहाँ ना कोई नियम है ना ही कोई पाबंदी. तो चलिए हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर बातें और गीत होंगे सपनों के. और आज आपके साथ रहूँगी मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन. और किसी ने खूब कहा है कि आपकी पलकों के पीछे छुपी हुई है एक पूरी अनकही दास्तान. आइए सुनते हैं इसी दास्तान को इस गीत के जरिए, जिसे हम शामिल कर रहे हैं तलाश फिल्म से.

जी हाँ, नैनो ने सपनों की महफिल सजा ली है और आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और बातें हो रही हैं, आज गीत सुन रहे हैं हम आज सपनों पर। तो दोस्तों, वैसे तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सपने हमारी अवचेतन सोच का आईना है। वो बातें जिन्हें हम दिन के उजाले में खुद से भी छुपाते हैं, वो रात के अंधेरे में सपनों का रूप लेकर आ जाती हैं। क्या आप याद करोगे कि कौन सा आपका अपना वो है जो सपना ऐसा अनकहा है अब तक, जो अब तक पूरा नहीं हुआ, जिसको आप कह नहीं पाए, साझा नहीं कर पाए? तो चलिए इसी एहसास को घोलते हैं संगीत में और सुनते हैं ये सुरीला नगमा सिलसिला फिल्म से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

साथियों, सपने वो अनकहे खत हैं जो हमारा मन खुद को ही लिखता है। सपनों की ये अनकही दुनिया भी कितनी अजीब है। रात के होने पर सपनों के रूप में हमारे मन में छुपी हुई बातें कभी हमें हंसाती हैं तो हमें कभी रुलाती हैं, और साथ ही साथ इन दोनों के अलावा हमें कभी कभी डराती भी हैं। यही नहीं, बरसों पुराने खोए हुए लम्हों से कभी कभी हमें दोबारा मिला भी देती है। हमराही कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं अपने ही दोस्त रूपा के साथ। समय हुआ है 3:29 और 25 सेकंड।

मोहब्बत और सपनों के इसी खूबसूरत रिश्ते को बयां करता हुआ एक ऐसा ही बेहतरीन गीत सुनते हैं. आइए

रात ढले तो ख्वाब सजाए, दिल ने चुपके से गीत गाए, थम जाए भले ही दुनिया सारी, मोहब्बत का सफर चलता जाए, हाँ मोहब्बत का सफर चलता जाए।

तो दोस्तों बीते दिनों की मीठी बातें सपनों में जगमगाती रातें, कुछ खट्टी मीठी सी पुरानी यादें जैसे पलकों पर ठहरी हो बरसाते। हाँ, सपनों की सुनहरी यादें दिल में कई नई उम्मीद जगा देती हैं। थम जाए भले ही दुनिया सारी, मोहब्बत का ये सफर चलता रहता है, चलता रहता है और चलता रहता है।

दोस्तों, रात की खामोशी में भी एक आवाज़ है, हर बीते हुए लम्हे में छुपा हुआ कोई एक राज है। आंखें बंद करो तो आ जाती है वही मुस्कान, सपनों की इस दुनिया का एक अलग ही अंदाज है। जी हाँ दोस्तों, सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जो लम्हे हमारी आंखों में और दिल में बस जाते हैं, वो वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और भी सुनहरे हो जाते हैं। हमराही से विदा लेने से पहले इतना ही कहेंगे कि अपने ख्वाबों को संभाल कर रखिए, क्योंकि कल सुबह इन्हीं ख्वाबों को सच जो बनाना है। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमारे साथ, दिन पर दिन गाते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में आई अचानक बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीयों को बचाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वे भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां एपिसोड होगा। यह कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से दो दिन के दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलपुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनम थिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो हिंदू ये मानता है कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, वह हिंदू नहीं रह जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुत्व हर इंसान की गरिमा को पहचानता है और एक ही सच तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों को स्वीकार करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी आज तेज बरसात की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila.

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 4:11 और 17 सेकंड हो चले हैं। आप हैं अपने ही दोस्त रूपा के साथ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि अरुणिमा में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और लीजिए एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं और 6 बजे तक आपके साथ ही रहूँगी। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, और आज अरुणिमा में हम आपको सुनवाएंगे कुछ चुनिंदा गीतों को और बातें करेंगे आपके साथ, कुछ बहुत ही सकारात्मक बातें। तो जनाब, सकारात्मक विचारों का हमारी दुनिया में थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं हम कंजूसी करते हैं अपने आप को सकारात्मक रखने में। तो आज इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे अरुणिमा में। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी मीठी सी ये कहानी।

दोस्तों, सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता, लेकिन हाँ, हर छोटा प्रयास आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। हर दिन की एक छोटी सी कोशिश ही बड़ी सफलता की एक न एक दिन नींव रखती है।

साथियों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपकी सोच तय करती है कि आप उनसे हारेंगे या सीखकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कभी कभी अपना नजरिया बदलने से भी हमारी जो मुश्किलें इतनी कठिन लगती हैं वो आसान हो जाती हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz के साथ। समय हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 4:24 और 44 सेकेंड। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ।

जी हाँ, मुश्किल और कठिन समय में अपनों का साथ बहुत अहमियत रखता है। जब अपने साथ हों तो हर मुश्किल से दुनिया जीती जा सकती है। दूसरों की भलाई भी जो करते हैं, उनका किया गया ये छोटा सा काम भी हमारे जीवन में, आपके जीवन में बड़ी शांति और खुशी लेकर आता है। कभी ना कभी आपने किसी ना किसी की छोटी सी मदद की ही होगी, और जो मदद पाने वाला है ना, जब उसकी मदद पूरी हो गई, उसका काम पूरा हो गया, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती है, उसे देखकर आपको भी ज़रूर कभी ना कभी खुशी तो मिली ही होगी।

वक्त दस्तक दे रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है हाथों से, जैसे हाथों में से मुट्ठी में से रेत भरी होती है ना, तो जब मुट्ठी को रेत को जितना भी बंद करो हाथों से फिसलती रहती है और कहती है कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं भी समय के साथ साथ बह रही हूँ, आप भी समय के साथ चलिए। इसी तरह हमारे स्टूडियो की घड़ी भी कह रही है, इशारा दे रही है, 4:40 आप हैं अरुणिमा के सफ़र पर रूपा के साथ। साथियों, हमारा आत्मविश्वास ही हमें हरा सकता है, आत्मविश्वास ही हमें ऊंचा उठा सकता है, यानी आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक ईश्वर भी हमारा साथ नहीं देते। तो अपने दिल को मजबूत करिए, आत्मविश्वास को मजबूत करिए और चल पड़िए एक नई सफर पर, उस नई राहों पर जो आपको आपकी मंजिलों के मुकाम तक पहुंचाएगी।

मुस्कुराहट एक ऐसा दिया जो दूसरों के दिलों में भी रोशनी कर देता है। आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का पूरा दिन बदल सकती है। और यकीन मानिए, जब आपके दुखों के बादल छट जाते हैं तब दिल का बोझ कितना हल्का हो जाता है। शायद आप भी कुछ ऐसा ही महसूस करते होंगे।

दिया इसलिए जलता है क्योंकि उसमें तेल है, वो हवाओं की परवाह नहीं करता। आप भी बस अपने कर्म करते रहिए, नतीजे खुद ब खुद दिखेंगे, क्योंकि नतीजों की चिंता किए बिना सिर्फ अपनी कोशिश पर ही ध्यान देंगे तभी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। वक्त हुआ है 4:50 और 14 सेकंड। आप हैं अरुणिमा के सफर पर अपने ही दोस्त, अपने ही हमराही रूपा धवन के साथ।

0: जिंदगी में अगर कभी अंधेरा लगे तो आप समझ लेना कि आप अपने अंदर का दिया जलाना भूल गए हैं। अंदर का दिया यानी आपके मन की सोच, आपकी सकारात्मक सोच ही आपके रास्ते का उजाला बनती है। तो अपने मन को इतना मजबूत बनाए रखिए कि जब भी कभी हिम्मत हारे तो फिर से उसे एक नई ऊर्जा देकर फिर से उसकी लौ को जागृत करें और एक नए विश्वास के साथ उठ खड़े हों।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: अच्छा गुड नाइट।

वैसे ये सोने का नहीं जागने का वक्त है जनाब, और फिलहाल इसी के साथ रूपा को विदा दीजिए। अरुणिमा से भोर सुहानी कार्यक्रम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

0: और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में बाढ़ की त्रासदी के बाद अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 भारतीय नागरिकों से संपर्क फिर से स्थापित हो गया है, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था। मंत्रालय ने कहा कि 275 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं और भारतीय मूल के लगभग 128 लोग, जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है, वो भी लापता हैं। स्थानीय सरकारी सूत्रों के अनुसार पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से दो दिन के दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलापुझा में प्रमुख मलयालम दैनिक केरल कौमुदी के 115वें स्थापना वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति पथनम मथिट्टा में केरलम की प्रसिद्ध अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए गुजरात में विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के खिलाफ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। थाईलैंड ने शुक्रवार को हांगकांग चीन पर जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड सहित कई स्थानों पर बारिश की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, today. The two leaders would review cooperation in trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. Today, Prime Minister Narendra Modi will first attend a yoga program organized by the Yoga Federation of Uzbekistan. And after that, he will directly go to the Palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where both the leaders will participate in bilateral talks. Both the leaders will review cooperation in the areas of trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people relations at the President.

सपनों का सुनहरा रथ तैयार है, सूरज की लालिमा आकाश पर छाने वाली है। इससे पहले कि वो लालिमा आकाश पर छाए, आइए हम सभी उस ईश्वर, उस परमात्मा को प्रणाम करें जिसने इस सृष्टि को बनाया है, हमें जीवन दान दिया है। उस जीवनदाता को हम सभी का बहुत बहुत प्रणाम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोर सुहानी लेकर आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त रूपा धवन। नमस्कार, सुप्रभात।

प्रकृति की हरियाली से, हरियाली जिसे अब तक चांद ने ओढ़ रखा था काले अंधेरे के रूप में। उस अंधेरे को दूर करती हुई सूर्य की रोशनी, सूर्य की लालिमा धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है। और सुबह सुबह तो कह रही है कि मैं तो आ गई हूँ जनाब, लेकिन आप कहाँ खोए हुए हैं। तो जल्दी जल्दी से उठिए और उठकर नमन कीजिए सूर्य भगवान को, आज की नई सुबह को स्वागत कीजिए दोनों हाथों से, बाहें फैलाकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। भोर सुहानी में आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, जिसमें मिला दो उसकी तरह ही वो हो जाता है। इसी तरह हमें भी पानी से सबक लेना चाहिए। जैसे भी जिंदगी की राहें हों या जैसा भी आसपास का वातावरण हो, हमें उसी तरह से उस वातावरण में घुल मिल जाना चाहिए। शोर फिल्म का ये गीत आप सभी के लिए, मुकेश साहब और लता जी के।